बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नरक कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हों त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे ओढ़े वस्त्र काजर में

बिना शास्त्र के संग नर भेड़ जानो, बिना शास्त्र के संग नर भेड़ जानो। गुरु गोबिंद सिंह का मुखवाक है, बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरिया नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा? शेर मैदान जंग विच उत्तो छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की, 4,000 ते आया इधर फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया, ते जेड़े सी ना उन्होंने खिलारे हुए बंदूक लैके वह भज गए, जेड़े दुष्टां दी फौज सी वह भज गई, ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली उन्होंने पिस्तौल ते उन्हें रात ही खोले से ते डंडे इन्हें हाथ फड़ाते से, वह डंडे लैके शीशगंज अंदर आन बड़े। असी डे सा कीर्तन कर बाबे ने साडे राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी, ये राम ही डे सी जपण। उन्हें सिखा आण के कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड्डो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवंदे साड़ देना, धीआं तुहाडीआं खिच के लै जाणगियां, आ गोलगां गलगां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकते तो कर लो। यह साडे सिंह साहब बहादुर महाराज नूं नमस्कार बख्शण। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दिती और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानू बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दिता सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने, प्यारे खालसा जी मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्हों के अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वह इन्हों के नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बबर शेर जिमें बबर शेर के नजारे उथे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ता हूं, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकच्छ तुरंग स्पच बटो करकार कृपान कम पावेंगे, निक्षे जिम केर पर्वते ता सोर दिवाले पावेंगे, पल पाल पया संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया एक तुक, निक्षे जिम केर पर्वते, केर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा होंदा है वह जो फिर पर्वत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आ उन्हें फिर जे ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चान होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा, तो अगे की है सिंह बुक्के सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर होवा, ऐ बाबे ने छाल मार के शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फड़ ली, जकारे छड़ते पंज पै पंज के पांच सत पिछे बेचारे मेरे वर्गे वह भी मगर मगर भजी आने, जो उन्हें देखा गुस्टा तो ये ते आ गए तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, वह 4,000 जहां फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दंद टुट गए, 50 सत्ता गोडे टुट गए, है जी जो भज उठे नाले ऐ वेखन नाले भजन, तो फिर एक उठे खलो गए। इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हां, ना असी बीबी मारते हैं, ना असी बुढ़े मारते हैं, ना असी बच्चे मारते हैं, ना असी भजदे मारते, असी भजदे नहीं मारते, तुसी प्यो दे पुत्तो खड़ो जाओ, नहीं तो असी इधर जाने जड़े आ आते हैं उन्होंने छड़ के लाल किले वाल भज उठे, वह पहला ही अगे भज उठे, है जी 12,000 दुष्ट ए सारे बाबा जी ने, मैं तो कहना महाराज इन्होंने सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है, क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4 दीवान लगा रज गए होवोगे, श्रवण करो गुरु गोबिंद सिंह।

शब्द काली कोयल तुम कित गुण काली, अपने प्रीतम के हों बिरहों जाली। इस दी बंदश पैरवी ते शिवरंजनी दे मिलाप, दो रागां दे मिलाप दे विच है। आप प्यार ना सर्वण करते।

दयाल होए मेरा स्वामी, किस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जन नानक धूड़ मंगे

जी बदो मुल्ला कहो ने आओ खुदाई जी बदो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत भाई जी बदो सो धर्म कर थापो अधर्म

ताँ किस पे आँख सुनाइए कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भावे मैं खाई अवर ओट में सगली देखी अवर ओट में

राग टोडी विच आप जी शब्द श्रवण करोगे। पंचम पातशाह दी रचना है। गुरु ग्रंथ साहिब जिस राग विच शब्द दर्ज है उसे विच आप जी इस श्रवण करोगे।

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उन्हां दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते, फिर उन्हां ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

मनुख भगती करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणा दी पूजा कर, उना दे चरणा ते स्याणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहने ने जवां दी मार तो तेनू छड़ा लेंगे। कबीर जी ने भी आख्या